0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Huzza 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
13: You are listening 97.1 FM.

यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: बोतल है।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are saying, hey, we are playing
13: Fazan 97.1 FM.
14: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
15: 97.1 FM।
11: You are listening 97.1 FM।

0: ठहरी है जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे रहे।
2: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: This is a public service announcement.
3: The station.
4: That plays
5: foot tapping music.
6: Hazar 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही
1: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

कोई सितम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Get ready to move.
2: It's all about the beat.
3: Wow, FM.
4: Only tune Super Hit Channel.
5: Fizz on 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
5: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
4: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
5: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
4: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं.
5: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
4: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ. ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
4: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
7: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
8: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
9: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
10: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
9: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
10: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
9: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
10: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
11: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
9: Park Foods, जो नाम है मायार का.
12: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
13: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
14: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का.
13: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स.
14: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट.
13: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह.
14: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है.
13: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS.
14: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
13: टेस्ट भी वाइब भी.
15: You are listening 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਦੂਆਂ ਦਾ

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: लासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: जबरदस्त हिट्स,
8: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
9: फजा 97.1 FM,
10: आई लव इट।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are safe. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
10: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM,
1: आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने दे स्वागा ये कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: This is a public service announcement.
3: The station.
4: That plays
3: foot tapping music.
5: Hazar 97.1 FM.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही
1: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: जबरदस्त हिट्स,
7: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
8: फजान 97.1 FM, आई लव इट।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें. सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर. और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी. स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर. चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ. रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक. विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड, नॉटिंघम, या अभी राब्ता करें 07593150669. मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा.
5: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
6: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
5: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
6: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
5: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं.
6: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
5: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ. ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
7: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
4: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
8: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
9: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
10: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
11: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है. आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है. जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में. तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद. मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
12: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station. That plays
9: foot tapping music.
10: Huzzah 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड एप।
12: You are listening 97.1 FM.

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो हेलो हेलो, अ वेरी इंटेलेक्चुअल मॉर्निंग टू ऑल माय एब्सोल्यूट लिसनर्स हु आर लिसनिंग मी राइट नाउ। दिस इज योर होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट डेली डोज ऑफ इंस्पिरेशन एंड इनसाइट। जी हाँ लिसनर्स, द डीवा डायलॉग सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे। जी तो लिसनर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेडियो फजा 97.1 FM है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट का डोज। तो इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के डोज को लेके चलेंगे हम और आप अब से लेके ठीक दो घंटे तक, यानी के ठीक 10 बजे से लेकर ठीक 12 बजे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ। तो जी लिसनर्स, मिलकर बनाएंगे आपके किस दिन को, इस सुबह को और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा यादगार। सो इंतजार किस बात का है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। जी तो लिसनर्स, अभी उठाइए फोन 01157100971। जी हाँ, ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर। सो जल्दी से इस नंबर को सेव कर लीजिए, अगर तो आपने सेव किया हुआ है तो फौरन से जाइए व्हाट्सएप पर और अपने नाम के साथ साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम, कुछ भी जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपको कोई अच्छा पीस ऑफ एडवाइस मिले, या फिर हो आपकी कोई फेवरेट म्यूजिकल रिक्वेस्ट, तो वो सभी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि हम आपको सुनते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सिर्फ हमें सुने। रेडियो फजा .com.uk है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। सो इस वेबसाइट के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं, आपको डेली अपडेट्स मिल सकती हैं और साथ ही साथ आप जान सकते हैं कि आपका फेवरेट आरजे किस दिन, किस वक्त, किस टाइम पर आएगा। सो इन सभी अपडेट्स के लिए आपको विजिट करना होगा रेडियो फजा .com.uk को। जी तो लिसनर्स, अगर आप चाहें कि आपका दिन खूबसूरत बने, यादगार बने, सो आप हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM इसको इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा तरीका है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने जाना है एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहां जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM और विदिन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, यही है हमारी एप्लीकेशन। सो जल्दी से जाइए और जाकर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ कनेक्टेड रहें और आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें।

जी तो लिसनर्स, अब बात करते हैं उन सभी लिसनर्स की जो इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं या फिर हैं रास्ते में या पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। अगर आप चाहते हैं कि आपका सफर भी इसी तरह से खूबसूरत बने, हंसी बने और आपको मेरी खूबसूरत सुरीली आवाज सुनने को मिले, सो उसके लिए आप वजा टैप के थ्रू हमें ट्यून कर सकते हैं। लेकिन सुनते सुनते आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि बी सेफ, क्योंकि ड्राइविंग करते हुए अक्सर औकात हमें अपना पूरा फोकस ड्राइविंग पे रखना चाहिए। सो आपने एहतियात से ड्राइविंग करनी है ताकि आप किसी बड़े हादसात से और इस तरह की डिफिकल्टी से या फिर डिफरेंट हादसात के मौजब से बच सके, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी प्रिकॉशियस और हमें चाहिए कि हम इस चीज़ का खुद ही ख्याल रखें और अपना एहसास करें।

लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। अभी तक आप सभी ने तकरीबन अपने दिन का आगाज कर लिया होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक अपने दिन का आगाज नहीं किया तो इट्स द टाइम, इट्स द मोमेंट। आइए मिलकर करते हैं इस खूबसूरत से नए दिन का आगाज, क्योंकि हम और आप मिलकर बनाएंगे आपके इस दिन को और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा यादगार। See to my beautiful listeners, welcome to this magnificent लिसनर्स, मैं कह रही थी कि आप सभी को वेलकम करती हूँ 23 जून 2026 में, एंड नाउ वी आर ऑफिशियली हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून। यानी कि अब ये जो जून का मंथ स्टार्ट हो चुका था वो ऑफिशियली फाइनली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है अपने इख्तिताम की तरफ, यानी कि अपने करीबी मराहिल की तरफ। जो कि हर एक मंथ स्टार्ट होता है, कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो फिर उसने एंड पर भी जाना होता है, तो कुछ इसी तरह से जो कुछ ही दिनों पहले हमारा जून का महीना शुरू हुआ था, जिसे हम इस तरह से सोच रहे थे कि अभी तो स्टार्ट ऑफ द जून है, लेकिन देखते ही देखते वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ और आज हो चुकी है 23 जून। यानी कि अब बस एक लास्ट वीक रह गया है, इसके बाद हम ऑफिशियली गुड बाय कह देंगे जून 2026 को। यानी कि अब इसके बाद ये मन दोबारा नहीं आने वाला। कुछ इसी तरह से हमेशा कहा जाता है कि जो वक्त एक बार गुजर जाए वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। सो हमें वक्त की कदर उसी वक्त करनी होती है जब वक्त हमें मुयस्सर हो।

लिसनर्स वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे क्योंकि आई नो आपका और मेरा वक्त काफी ज्यादा कीमती है, तो पूरी कोशिश करेंगे आपके इस वक्त को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएं, मेमोरेबल बनाएं। सो शो का बाकायदा आगाज करते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपसे होगी बहुत सारी गपशप, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि शो का स्टार्ट एक फ्रेश एनर्जेटिक वाइब से होना चाहिए। सो आप सभी के लिए प्ले करती हूँ ये खूबसूरत सा साउंड ट्रैक जो कि आपके मूड को इंस्टेंटली बूस्ट कर देगा और आपको फ्रेश और एनर्जेटिक फील करवाएगा। सो डियर लिसनर, सुनते हैं ये खूबसूरत सा म्यूजिकल ट्रैक और ट्रैक से उस पर आपसे होती है मुलाकात। तब तक के लिए हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और रेडियो फजा 97.1 के साथ इसी तरह से रहिए और सुनते हैं ये ट्रैक।

वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत ट्रैक को एंजॉय किया होगा. ये ट्रैक थोड़ा सा ज्यादा एनर्जेटिक था, सो मैंने सोचा कि कुछ एनर्जेटिक प्ले किया जाए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम काफी ज्यादा लेजी फील कर रहे होते हैं और हमें चाहिए होती है थोड़ी सी एनर्जी. सो कुछ एनर्जी तो हमें अच्छे ब्रेकफास्ट से मिल जाती है, लेकिन इंसान के माइंड को फ्रेश और एनर्जेटिक करने के लिए म्यूजिक एक अहम रोल प्ले करता है. सो इसलिए मैंने सोचा कि ये साउंड ट्रैक प्ले किया जाए. होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा. अगर आपका भी कोई फेवरेट साउंड ट्रैक है या आप चाहते हैं कि हम उस गाने को इस शो में शामिल करें, सो आप हमें बता सकते हैं. सिंपली हमारे नंबर पर जाकर हमें एक छोटा सा टेक्स्ट कर दें और आपकी रिक्वेस्ट को जरूर फुलफिल किया जाएगा.

0: It's commercial time.
1: हेलो सुमान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: You are staying. We are playing.
11: Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।

वेलकम बैक वंस अगेन. एक बार फिर से मैं हूं आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट डेली मोटिवेशनल डोज द टीवा डायलॉग सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे. Listeners, to set the perfect intellectual momentum, मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा खूबसूरत सा deeply profound quote जो कि बना देगा आपके इस दिन को और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा यादगार. लेकिन listeners, यादगार होने के साथ साथ ये जो कोट है ना ये आपको काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव इनर्जी देगा, पॉजिटिव वाइब्स देगा, क्योंकि इंसान जिंदगी में काम कर करके थक जाता है और जब बहुत सारे काम कर लेता है तो इंसान क्या होता है, थोड़ा सा डिमोटिवेट. सो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे लिसनर्स बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो और उनका दिन बने खूबसूरत प्लस पॉजिटिव. सो इसीलिए मैं रोज लेकर आती हूँ आप सभी के लिए ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत कोट, ताकि एटलीस्ट इंसान थोड़ा पॉजिटिव रहे. क्योंकि मैंने सुना है कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी ना करें लेकिन फिर भी स्टिल आप तरक्की करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अच्छा रखें. जिस तरह से दिन का आगाज, दिन की शुरुआत होती है हमारी खूबसूरत से म्यूजिकल ट्रैक से, तो इसी तरह से आप सभी को मालूम है कि मेरे शो की परंपरा है कि हम हर शो स्टार्ट करते हैं एक खूबसूरत मोटिवेशनल कोट से. सो आज का जो कोट है आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, हमारा आज का मोटिवेशनल कोट कुछ इस तरह से है कि द ओनली पर्सन यू आर डिसाइंड टू बिकम इज द पर्सन यू डिसाइड टू बी. सो नाउ लेट्स अनपैक दिस कोट, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है. एज सच वर्डिंग मुश्किल नहीं है लेकिन इसका मीनिंग काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है. तो हम आइए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं ताकि हम

चलिए तो लिसनर्स, आई नो जो हमारा आज का कोट है वो जितना सिंपल दिख रहा है इतना सिंपल है नहीं. सो बेसिकली आज का कोट यूं है, कुछ ऐसा कहता है कि जिंदगी हमें कभी भी वो नहीं बनाती जो कि ऑटोमेटिकली तय हो. इंसान हमेशा वही बनता है जिसको बनने का वो फैसला करता है. यानी कि इट्स टोटली योर चॉइस, आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं होता कि किसी भी इंसान की किस्मत या डेस्टिनी में हो कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर पायलट बनेगा. ये इंसान पर डिपेंड करता है, वो खुद से सोचता है, डिसाइड करता है कि आया उसको ज़िंदगी में क्या करना है, कहाँ जाना है और क्या बनना है. और जब इंसान इस चीज़ को डिसाइड कर लेता है एंड देन फिर वो स्टार्ट करता है उसमें स्ट्रगल. सो इट्स टोटली योर चॉइस कि आप ज़िंदगी में क्या बनते हैं. तो अगर कोई इंसान ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है तो इट मीन्स कि इसमें उसका अपना हाथ है, उसकी अपनी स्ट्रगल है. हाँ, ये चीज़ भी कही जाती है कि समटाइम्स लक मैटर करती है, लेकिन लक से ज़्यादा मैटर करता है आपका फोकस, आपका बिलीव. और अगर ज़िंदगी में कोई इंसान नाकाम होता है सो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट उसको खुद भी जाता है, क्योंकि अगर कोई इंसान उस गोल को अचीव करने के लिए खुद ही मेहनत नहीं करता तो कोई दूसरा उससे वो गोल कैसे हासिल करके देगा. सो सिंपल सी बात है कि आपने क्या करना है ज़िंदगी में. आपने सबसे पहले अपना एक गोल सेट कर लेना है कि आया आपको ज़िंदगी में क्या करना है. और फिर जब आप कोई गोल सेट कर लें सो बस अब उस पर स्टक हो जाएं, क्योंकि अब आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है और एक एक स्टेप आगे जाना है.

यूजुअल लिसनर्स, आप सभी ने अक्सर औकात अपनी जिंदगी में ये चीज फील की होगी कि वी ट्रैप अवर सेल्फ इन सर्कमस्टांसेस। हम अक्सर अपने पास, अपने एनवायरमेंट या अपनी लक को ब्लेम करते रहते हैं कि फ्रॉम वेयर वी आर टूडे। बट इन साइकोलॉजी वी कॉल दिस हैविंग एन एक्सटर्नल लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी कि ये सोच के बाहर की दुनिया हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल करती है, हम क्या करते हैं, खुद को बहुत पीछे धकेल देते हैं और खुद को बहुत पीछे रख देते हैं। लेकिन लिसनर्स, बट दिस कोट कंप्लीटली शैटर्स द इल्यूजन। सो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, रेडिकल सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप अपनी डेस्टिनी को खुद डिसाइड कर सकते हैं, आप अपनी किस्मत को खुद डिसाइड कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी फोकस ऑन योर सेल्फ एंड यू हैव टू बी फोकस ऑन योर गोल्स। सो उम्मीद करती हूँ हमारा ये आज का कोड आप सभी को अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप इसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो इस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी, हेल्प आउट करेंगी। सो वेल, इसी तरह के खूबसूरत मज़े के कोड्स सुनने के लिए इसी तरह से हमारा शो सुनते रहें, और उम्मीद करती हूँ आपको ये कोड काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अब वक्त है हमारे शो को आगे बढ़ाने का। जैसा कि काफ़ी सीरियस डिस्कशन तो हमने कर ली और अब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिल गई। जैसा कि कहा जाता है कि दिन का आगाज़ होता है एक अच्छे हेल्दी मील से, साथ ही साथ हम अपने शो का आगाज़ करते हैं एक अच्छे खूबसूरत साउंड ट्रैक से प्लस एक खूबसूरत मोटिवेशनल बात से। सो ये थी आज की हमारी मोटिवेशनल बात। इस हवाले से अगर आपका कुछ कहना है या कुछ शेयर करना है, सो 0115710097 हमारा स्टूडियो का नंबर है। सो आप इस पर जाकर हमसे शेयर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप सभी लोग अपना फीडबैक शेयर करते हैं, इस तरह से मुझे डिफरेंट थॉट्स मिलते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस मिलते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से होती है। तो जब बहुत सारे लोग मिलकर आइडियाज देते हैं तभी होती है न्यू क्रिएटिविटी। तो इसी बात के साथ अभी वक्त हुआ है हमारे शो में एक अदद

तो जी लिसनर्स, मैं क्या कह रही थी कि इसी बात के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत सा म्यूजिकल ट्रैक, ताकि थोड़ा सा मूड हमारा अच्छा हो जाए, मूड थोड़ा सा लाइवली हो जाए. और अगर आपको लग रहा है कि जो मोटिवेशनल बातें होती हैं वो थोड़ी सी बोरिंग होती हैं, सो उन सब चीज़ों से भी मूड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए. सो जी सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक, तब तक के लिए हमारे साथ रहिए.

जी तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको हमारा ये म्यूजिकल ट्रैक? वैसे ये ट्रैक वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है, क्योंकि मैं इसको काफी ज्यादा सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफी सॉफ्ट स्पोकन सा है, लिरिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सॉफ्ट से हैं, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जब आप इस तरह का म्यूजिक सुने जो आपको पर्सनली पसंद हो, जिसमें शोर शराबा ना हो, लिरिक्स अच्छे हो और बिल्कुल सॉफ्ट रोमांस हो। तो ये सॉन्ग थोड़ा सा इस स्केच को पोर्ट्रे करता है। तो जी लिसनर्स, आप सभी को भी किस तरह का म्यूजिक अच्छा लगता है आप सब मुझसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। 01157100971 हमारे स्टूडियो का नंबर है, जो कि आप सभी को मालूम है। तो जल्दी से जाइए और जाकर मुझे बताइए कि आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है और आप क्या चाहते हैं कि मैं शो में क्या प्ले करूं, क्योंकि ये शो है मेरा स्पेशल आप सभी के लिए, स्पेशली माय लवली डिवास के लिए। तो मैं चाहती हूं कि मेरी जितनी भी गर्लीज लिसनर्स हैं वो मेरे शो को पसंद करें, ना सिर्फ, और बल्कि इस शो में वही सब हुआ जाए जो कि हमारी डिवास चाहती हैं। तो जी लिसनर्स, इसी के साथ साथ अब हमारा वक्त आ गया है शो को आगे बढ़ाने का, ठहरिए यानी कि नेक्स्ट सेगमेंट की जाने बढ़ने का। सो आज का हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है बहुत ही ज्यादा हमारी डिवास में मकबूल, क्योंकि आई नो सबसे पहले एक नए दिन का आगाज होता है सुबह के साथ। सुबह एक परफेक्ट मील हम सभी इंजॉय करते हैं, एंड देन फिर जितने भी हमारे मर्द हजरात होते हैं, चाहे तो वो लड़के हों या फिर हों ऑफिस गोइंग मैंस, तो वो क्या करते हैं कि अपने काम काज की तरफ निकल पड़ते हैं। कोई जा रहा है दफ्तर, तो कोई जा रहा है शॉप पर, तो कोई जा रहा है स्कूल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज, तो फिर पीछे कौन बच जाती हैं घर में? जी हाँ, हमारी लवली डिवास। सो हमारी लवली डिवास का मेन हेडिक ही ये होता है कि डेली बेसिस पर ये सोचना कि अच्छा चलो आज खाने में क्या बनाया जाए, क्या कुछ ऐसा पकाएं जो सबको पसंद आए, चाहे हों बच्चे या हों बड़े, सबको हो वो पसंद। सो ये तमाम तर चीज़ें सोचना बहुत ज़्यादा ऐसा मुश्किल और डिफ़िकल्ट टास्क है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स जब हमारे घर में कोई गेट टुगेदर हो, फैमिली गैदरिंग हो। अक्सर आपको पता ही है कि एशियन फैमिलीज में फैमिली गैदरिंग्स होती रहती हैं, जिसमें रिश्तेदारों से, क्लोज दोस्तों से मिलने मिलाने का सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। तो अच्छा, जब ऐसा कभी होता है ना कि मेरे घर में के बहुत सारे लोग गेस्ट वगैरह आ जाएं, और तब भी मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि अच्छा अब खाने में क्या बनाया जाए, सो आई एम श्योर ऑनेस्टली स्पीकिंग के मुझे ऐसा फील होता है कि जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि हम इस चीज़ को डिसाइड करें कि अच्छा हमने खाने में क्या बनाना है। सो मैं अपनी तमाम तर डिवास की इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए लाई हूँ आपके लिए ये मज़ेदार सा सेगमेंट, द स्पाइस किचन विद आरजे ज़ैनब फातिमा के साथ। तो जी लिसनर्स, आज भी आपके लिए लाई हूँ ऐसी ही मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज जो कि हो ऑथेंटिक, साथ ही साथ हो थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ा सा यूनिक फ्यूजन, और ऐसे रेसिपीज जो आप अक्सर औकात घर से बाहर जाकर फाइव स्टार होटल्स में या फिर रेस्टोरेंट्स में ट्राई करते हैं। लेकिन आपको मैं सिखाऊंगी वो सभी रेसिपीज, लेकिन सिंपली बेसिक स्टाइल में, यानी कि अपने डिफरेंट से अरोमा में और डिफरेंट स्टाइल में। तो जी लिसनर्स, इंतज़ार किस बात का है? अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं फौरन से छोड़ दीजिए अपने कामों को, काजों को, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आज की मज़ेदार चटपटी रेसिपीज। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आप अपनी नोटबुक ओपन कर ले। अगर तो आपके पास नोटबुक नहीं है तो आप कोई भी डायरी ले सकते हैं, ताकि आप सभी इन्ग्रीडियंट्स नोट कर लें और कुछ भी आपसे मिस आउट ना हो जाए। जी तो लिसनर, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछला जो हमारा गुज़िश्ता वीक था उसमें हमने इस चीज़ को फोकस रखा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देसी खाने बनाएं। तो इस वीक का हमारा जो मोटिव है वो कुछ यूँ है कि हम बनाने जा रहे हैं इस वीक में टोटली फाइव स्टार रेसिपीज़, यानी कि ऐसी रेसिपीज़ जो कि एशियन फैमिलीज़ में बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती हैं, और आपके और मेरे जैसे बड़ों को भी, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो इन रेसिपीज़ को ज़रा इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप सभी को पता है कि देसी फैमिलीज़ में होते हैं देसी पेरेंट्स, और हमारे बुज़ुर्ग क्या चीज़ पसंद करते हैं, वही बेसिक सा देसी खाना। लेकिन
टेस्ट को थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए और हमें चाहिए कि हम अपने मूड को भी थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड चेंज इज नेसेसरी इन एवरीथिंग. सो चेंज बहुत जरूरी होता है. अगर चेंज ना हो तो बाज़ुकात लोग और इंसान बोर हो जाते हैं. तो दिल लिसनर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आपका, मेरा, हम सबका फेवरेट चिकन पार्मिजान, जिसे हम नॉर्मली तो रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा खाते हैं और हमें बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन हम सोचते नहीं है कि हम क्यों ना इसे घर में ट्राई करें. सो आप सभी के लिए आज हम बनाएंगे चिकन पार्मिजान. सो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स आप सभी से शेयर कर देती हूँ कि इस रेसिपी में हमें टोटली क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, ताकि आप अपने किचन में जाके चेक कर लें कि कुछ इंग्रेडिएंट्स इधर उधर तो नहीं हुए. और अगर इन केस ऐसा हो भी जाता है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स इधर उधर हो जाते हैं या फिर घर पर अवेलेबल नहीं होते, सो टेंशन की क्या बात है, घर के करीब जो भी है स्टोर, आप फौरन से वहां जाकर इन इंग्रेडिएंट्स को खरीद सकते हैं. वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेसिपी के अंदर बेसिक बेसिक चीज़ें इस्तेमाल करूँ, ताकि आप सभी लिसनर्स को कुछ भी बाहर से बाय ना करना पड़े. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 10 में से कोई एक इंग्रेडिएंट ऐसा होता है जो घर पर नहीं पड़ा हुआ होता. सो उस इंग्रेडिएंट को हम कर लेंगे फौरी तौर पर बाय. लेकिन अब ज़रा आगे बढ़ के सुनते हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट.

इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, जिन्हें हम दरमियान से अच्छी तरह से कट करके उनकी अच्छे से पीसेस बनाकर रख लेंगे। साथ ही साथ हमें चाहिए कोटिंग के लिए मैदा 1.5 कप, जिसे हम अंडे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके और ब्रेड क्रम्स के साथ इसे यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं हमारी इस रेसिपी की जान यानी कि स्पाइसेस की। सो इस रेसिपी में शामिल होंगी काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, ओरिगैनो 1 टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून और साथ ही साथ नमक, जो कि है हस्प ज़रूरत हस्प जायका, आप अपने चॉइस के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने कोशिश की है कि इस रेसिपी में बिल्कुल बेसिक से इन्ग्रीडियंट्स को यूज़ करें ताकि आपके लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट ना हो, कोई ऐसा इन्ग्रीडियंट ना हो जो आपने इससे पहले कभी सुना ना हो और रेसिपी ऑथेंटिक बने प्लस टेस्टी बने। अच्छा, बहुत सारे लोगों का यह भी कहना होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार डिलिशियस बने, सो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे एक्स्ट्रा मसाले ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी अच्छी हो, मज़ेदार हो, सो कोशिश करें कि आप कम से कम स्पाइसेस को ऐड करें, क्योंकि जितने ज़्यादा स्पाइसेस रेसिपी में ऐड होते जाते हैं उतनी ही ज़्यादा वो जो टेस्ट है, अरोमा है, वो नहीं बरकरार रहता, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसेस की वजह से हमें टोटली स्पाइसेस का टेस्ट आ रहा होता है, लेकिन कम स्पाइसेस की वजह से हमें प्रॉपर मीट का टेस्ट और उसका अरोमा भी फील हो रहा होता है। सो आप भी कोशिश करिए कि बहुत सिंपल से बेसिक से मसाले यूज़ करें और कम क्वांटिटी में यूज़ करें ताकि घर के छोटे बड़े बच्चे सभी उस रेसिपी को खा सकें और किसी को भी कोई दिक्कत ना हो।

लिसनर्स, ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सिंपल से, बिल्कुल बेसिक से। हमने कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं यूज़ किया ताकि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं और मेरी प्यारी प्यारी डीवाज हैं उनको बिल्कुल भी डिफिकल्ट कुछ ना लगे। सो इंग्रेडिएंट्स तो यही थे जो कि मैंने आप सभी से शेयर कर दिए हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और जानिब चलते हैं प्रोसीजर के। सो सबसे पहले चिकन पार्मेसान बनाने के लिए हमें ज़रूरत है जिस प्रोसीजर की, सॉरी स्टेप की। सबसे पहले हम करेंगे मैरिनेशन और कोटिंग। सो सिंपली हमने क्या करना है, हमने चिकन फिलेट्स ले लेने हैं, ठीक है। उनको लेने के बाद उस पर नमक, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर अच्छी तरह से लगाकर उन्हें बिल्कुल 10 मिनट के लिए रख दें। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली हर चिकन पीस को लेना है। सबसे पहले आपने उसे कोट करना है मैदे में, सेकेंडली आपने उसको कोट करना है एग में, और लास्टली आपने उसे कोट करना है ब्रेड क्रम्स में। इसी तरह से आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करते करते, यानी कि आपने इस प्रोसीजर को रिपीट करना है और अपने सभी चिकन पीसेस को इस तरह से डिप करके, कोट करके इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। अच्छा, कोशिश करिएगा कि आप जब भी कोई चीज़ मैरिनेट करते हैं, सिंपली चिकन हो, बीफ हो, मटन हो या हो हमारा फेवरेट पनीर, सो मैरिनेशन करने के बाद कोशिश करें कि आप उसको मैक्सिमम 20-30 मिनट्स के लिए रख दें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो मैरिनेशन है वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाएगी, मसाले अंदर तक चले जाएंगे। सो डियर लिसनर्स, ये स्टेप्स तो मैंने आप सभी से शेयर किया। अभी वक्त हुआ है शो में कमर्शियल ब्रेक का, सो चलिए आगे बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पर, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप फिल्मी गाने,

0: یا پھر انگلش اور عربک. تو سنتے رہیے
1: فضا 97.1 FM.
0: ہو گیا نا کمال.

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फजा 97.1 FM। तो लिसनर्स, आपको मुझे साथ में हो चुका है एक घंटा कंप्लीट। देखा आप सभी ने किस तरह से जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं और बातों से बातें निकलती जाती हैं, और आप जब अच्छी गुफ्तगू कर रहे हो, प्लस जब ऐसा हो कि सामने वाला भी आपको पूरी तरह से रिस्पांस कर रहा हो, तो वो बातचीत ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लंबी हो जाती है। बातों का क्या होता है कि कुछ लोग दूसरे लोगों से कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो। अच्छा, लोगों को उन्हीं लोगों की बातें और उन्हीं लोगों की बातचीत शोर शराबा लगती है जिनमें वो लोग इमोशनली इंटरेस्टेड नहीं होते। समटाइम्स क्या होता है कि हम किसी भी न्यू इंसान से मिलते हैं, न्यू बंदे से मिलते हैं, सो वो हम में उस तरह से इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होता, तो उसे क्या लगता है, हमारी गुफ्तगू बोरिंग प्लस शोर शराबा। लेकिन अगर आप मिले किसी ऐसे इंसान से जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, या फिर वो हो आपका बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त, तो आप सभी ने ये चीज़ फील की होगी कि जो हमारी कॉन्वर्सेशन होती है वो टू साइडेड हो जाती है। फिर बिल्कुल भी फील नहीं होता कि कोई ज़्यादा बोल रहा है या कोई कम बोल रहा, क्योंकि हमारा फोकस इस चीज़ पर होता है कि हम किस तरह से अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। सो जब इसी तरह हो कि गुफ्तगू बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ही ज़्यादा बाअसर हो, तो इंसान को वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और इसी तरह जब भी मैं आप सभी से बात करती हूँ लिसनर्स, तो मुझे इतना मज़ा आता है कि समटाइम्स कि मुझे रियलाइज ही नहीं होता कि हमारे शो का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन दिल चाह रहा होता है कि क्यों ना और बातचीत की जाए।

जी तो इस तरह से इसी तरह से कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पहला एक घंटा आपका बनाया हमने खूबसूरत और यादगार, इसी तरह से बाकी का ये एक घंटा भी हम और आप मिलकर बनाएंगे खूबसूरत, यादगार और आपके इस दिन को और भी ज्यादा इंटरटेनिंग। सो एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी है म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक इज द हीलिंग पावर प्लस सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। सो जी लिसनर्स, सुनते हैं ये अच्छा सा मजेदार सा म्यूजिकल ट्रैक जो कि आपके मूड को इंस्टेंटली कर देगा बूस्ट। सो ट्रैक से वापसी पर होती है आपसे मुलाकात और फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं गुफ्तगू का सिलसिला। तब तक के लिए सुनिए ये फेवरेट म्यूजिकल ट्रैक जो कि एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा वायरल था। आई एम श्योर आप सभी ने इसको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देखा होगा, क्योंकि ये गाना वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोमांटिक सॉन्ग्स में गिना जाता था। तो सुनते हैं ये खूबसूरत ट्रैक और इधर से ही फिर कंटिन्यू करेंगे।

वेल लिसनर्स, जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्रोसीजर की, तो अब वहीं से हम उसको कंटिन्यू करते हैं. सो सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर वन था मैरिनेशन और कोटिंग. सो बेसिकली मैरिनेशन और कोटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कुकिंग के दौरान कि जिससे हमें बहुत सा टाइम देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहा जाता है कि आप जितनी अच्छी मैरिनेशन करेंगे और जितना ज़्यादा टाइम आप उस चीज़ को रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा डिलिशियस आपकी रेसिपी बनेगी और फिर जो मसाले हैं वो सभी अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएंगे और एक बहुत अच्छा टेस्ट और अरोमा क्रिएट होगा,

अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानेब, जो कि है हमारा फ्राई करना। सो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपली एक पैन लेंगे, पैन में हम अच्छे से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन फिलेट्स को, जिनको हम बिल्कुल मीडियम आंच पर अच्छी तरह से पकाएंगे। बिल्कुल स्लोली स्लोली हमने कुक करना है, आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, क्योंकि इससे इस चीज़ का खतरा है कि जो हमारे चिकन पीसेस हैं वो बाहर से तो जल्दी ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली कुक करेंगे और जैसे ही हमारे चिकन के पीसेस दोनों साइड से मीडियम गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे, सो हम उन्हें क्या करेंगे, एक बेकिंग डिश में निकाल कर अच्छी तरह से लेआउट कर लेंगे। ठीक है, अब आई आती है हमारे अगले स्टेप की, जो कि है द चीज लेयर। अब इसमें हम हर फ्राइड चिकन के पीसेस को 2-3 चम्मच टोमेटो सॉस में डालेंगे, ऊपर से थोड़ा सा ओरिगैनो छिड़केंगे और ढेर सारा मोज़रेला या फिर पार्मेजान। यानी कि हम मोज़रेला या फिर पार्मेजान दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, सो हम ऊपर से चीज से कवर कर देंगे। सो अब बारी आती है हमारे लास्ट और फाइनल स्टेप की, यानी कि रेसिपी को कंप्लीट करने की। सो सिंपली हम क्या करेंगे, अपनी डिश को माइक्रोवेव ओवन में रखेंगे 5-7 मिनट के लिए। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन पहले से गर्म होना चाहिए। ठीक है, इनको 5-7 मिनट के लिए हम रखेंगे ओवन में, बल्कि इतनी देर के लिए कि आपकी चीज़ मेल्ट हो जाए, और चीज़ मेल्ट होते ही आपकी रेसिपी यानी कि चिकन पार्मेजान हो चुका है तैयार। सो कैसे लगी आपको हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी, यह था हमारा आज का मेन कोर्स। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रेसिपी की जानिब, जो कि बहुत सारे लोगों की फेवरेट है, स्पेशली वेजिटेरियंस की फेवरेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं कि आप चिकन में, बीफ में, मटन में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस बताती हैं, अच्छी अच्छी रेसिपीज बताती हैं, लेकिन आप हमेशा स्किप कर देती हैं हम वेजिटेरियंस को, क्योंकि वेजिटेरियंस लोगों का मानना ये है कि हमें चिकन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए स्पेशली, तो वो इस चीज़ के अगेंस्ट होते हैं कि हमें चिकन टोटली अवॉइड करना चाहिए। सो अक्सर मेरे लिसनर्स मुझसे इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चिकन रेसिपीज बताती हैं, सो कुछ वेजिटेरियन में भी होना चाहिए। सो आप सभी की इन्हीं समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए डेली बेसिस पर अब लाती हूँ एक चिकन रेसिपी और साथ ही साथ एक वेजिटेरियन रेसिपी, ताकि हमारे जितने भी वेजिटेरियन वेज लिसनर्स हैं वो भी इन रेसिपीज को ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि उनको कैसे लगी। सो आज हम बनाने जा रहे हैं सेकंड रेसिपी, एग फ्राइड राइस। बहुत सारे लोगों का ये कंफर्ट फूड भी होता है, क्योंकि एक सर्वे के दौरान ये चीज़ बताई गई थी कि एशियन फैमिलीज में बहुत ज़्यादा वास्ट क्वांटिटी में लोग चावलों को पसंद करते हैं, चावल खाते हैं, और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं भी चावल लवर हूँ। अगर मेरे सामने दो रेसिपीज या सॉरी दो डिशेज होंगी जिसमें होगी एक चावलों की डिश या फिर बिरयानी, पलाओ, समथिंग लाइक दैट, और दूसरी जानिब होगी कोई ऐसी रेसिपी जैसे कि चिकन कड़ाही, सालन, रोटी, तो मैं हमेशा चावल प्रेफर करती हूँ। चावल मेरा कंफर्ट फूड है, ना सिर्फ चावल मुझे पसंद है बल्कि मैं इतने ज़्यादा चावल खाती हूँ कि आप मेरे सामने कोई भी किसी भी तरह के चावल रख सकते हैं, मैं उनको फ़ौरन से खा लूँगी। मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि बिरयानी हो, पुलाव हो या हो दाल चावल, चावल तो फिर चावल है। सो इसीलिए बहुत सारे लोगों का कंफर्ट फूड देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आज की हमारी नेक्स्ट यानी कि सेकंड रेसिपी है एग फ्राइड राइस। सो बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी से इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ, फ़ौरन से इनको नोट कर लें। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए चावल 2 कप, जो कि बिल्कुल 90% तक उबले हुए हों और बिल्कुल ठंडे हों। ठीक है, सो आपने क्या करना है, इन 2 कप चावलों को अच्छे से भिगो के साफ कर लेना है, देन आपने इनको बॉईल कर लेना है, और जब ये 90% कुक हो जाए, हल्की सी कनी रह जाए, तो आप इनको आराम से निकाल कर साइड पर रख ले और ठंडा कर ले।

जी तो लिसनर्स, अभी अभी हमें हमारे एक बहुत ही चाहने वाले लिसनर की रिक्वेस्ट आई है कि हम इस खूबसूरत से साउंड ट्रैक को शो में शामिल करें. सो उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं और शामिल करते हैं उनका फेवरेट साउंड ट्रैक. तो जी आप और मैं मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा डिफरेंट सा साउंड ट्रैक और फिर यहीं से कॉन्टिन्यू करेंगे रेसिपी को.

0: We are Fazan 97.1.
1: It's commercial time.
2: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनोल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

तो जी लिसनर्स, वेलकम बैक एक बार फिर से। आप सभी को खुशामदीद करती हूँ, आपकी फेवरेट होस्ट ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो द डीवा डायलॉग सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम पे। तो लिसनर्स, जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अपनी ऑथेंटिक रेसिपी की, तो अब वहीं से उस रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आप सभी से शेयर कर दिए थे। अब बारी आती है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की। सो सबसे पहले हम स्टेप नंबर वन में क्या करेंगे कि हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसको अच्छे से गरम कर लेंगे, एंड देन उसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और फिर उसी के अंदर जो अंडे हमने साइड पे रखे थे, जिनको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके रखा था साइड पर, उनको हम शामिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, आराम से स्लोली स्लोली उसको चम्मच से हिलाएंगे, ताकि हमारे जितने भी यानी कि हमारा जो जितना भी एग पेस्ट था वो अच्छी तरह से क्रम्बल हो जाए और छोटे छोटे टुकड़े बन जाए। अब इस स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसे निकाल कर साइड पर रख देंगे और आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की जाने। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सेम वही कढ़ाई यूज करेंगे और बाकी का जितना भी बचा हुआ कुकिंग ऑयल था उसे हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे चॉप्ड लहसुन, जिन्हें हम अच्छी तरह से 30 सेकंड्स के लिए अच्छे से सॉटे कर लेंगे। फिर शामिल करेंगे अपनी तमाम तर वेजीज। अब हम कौन कौन से वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं गाजर, शिमला मिर्च, इन्हीं दो रेसिपीज के अंदर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इन्हीं दो वेजिटेबल्स को शामिल कर देंगे, गाजर को शामिल करेंगे, शिमला मिर्च को शामिल करेंगे, और आंच को थोड़ा सा तेज कर देंगे, ठीक है। हम इनको अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अब इस स्टेप में हमने आंच को क्यों तेज किया, हमने आंच को इसलिए तेज किया ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो जल्दी से फ्राई हो जाएं और प्लस क्रंची रहें, क्योंकि अगर हम स्लो आंच में इन वेजिटेबल्स को कुक करेंगे तो हमारी वेजेस सॉगी हो जाएंगी और वो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती और आई एम श्योर खाने में भी नहीं लगेंगी। सो इसीलिए अपनी वेजिटेबल्स को हम क्रंची बनाएंगे और 1 मिनट के लिए तेज आंच पर उनको पकाएंगे।

0: बारी आती है हमारे सबसे फाइनल स्टेप की, यानी कि जिसे हम सिंपली असेंबलिंग भी कहते हैं। यानी कि इस स्टेप के अंदर हमारी रेसिपी होने जा रही है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसी में उबले हुए बॉइल्ड राइस शामिल कर देंगे, ठीक है, साथ ही स्क्रैम्बल्ड एग, हरी प्याज और साथ ही साथ सोया सॉस, सिरका, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और हसबे ज़रूरत नमक, जो हम अपने स्पाइस के और टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे, ठीक है। इन तमाम सारे इंग्रेडिएंट्स को शामिल कर देंगे। अब दोनों हाथों से इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है, एंड देन उसमें हम शामिल कर देंगे अपने तमाम तर वेजिटेबल्स जिन्हें हमने फ्राई करके रखा था। अब बस क्या करना है, 2-3 मिनट के लिए अच्छे से इन्हें मिक्स करना है, अच्छे से पकाना है और टोटली 5-6 मिनट्स में हमारे एग फ्राइड राइस हो जाएंगे तैयार, जो कि बहुत सिंपल से हैं और सिंपल से इंग्रेडिएंट से हमने इनको बनाया है। तो डियर लिसनर्स, अब बात हो गई काफी मिर्चों की, चटपटे खानों की, अब बारी आती है जरा से आगे बढ़ने की, यानी कि डेजर्ट की जाने। क्योंकि जहां हम बहुत ज्यादा चटपटी और स्पाइसी चीजें खाते हैं, वहीं फिर इंसान का दिल करता है कि कुछ थोड़ा सा मीठा हो जाए, और हमेशा खाने की एंडिंग भी हम मीठे के साथ ही करते हैं। सो इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, वैसे तो ये रेसिपी बहुत बेसिक है, बहुत कॉमन है, क्योंकि हम आप और हम सब जितने भी एशियन फैमिलीज हैं वो इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि कोई गेट टुगेदर हो या हो दावत। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आप सभी को अपने स्टाइल से बनाना सिखाती हूँ ऑथेंटिक शाही घी। तो इंग्रेडिएंट्स आप सभी से शेयर कर देती हूँ, आई एम श्योर ये इंग्रेडिएंट्स तो आप सभी के पास मौजूद होंगे, लेकिन अगर कुछ आपके पास नहीं मौजूद तो दिक्कत की क्या बात है, आप किसी भी करीबी स्टोर से खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोई भी मुश्किल इंग्रेडिएंट मैं कभी भी रेसिपीज में शामिल नहीं करती, ताकि मेरे लिसनर्स को कोई भी समस्या ना हो। सो इसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमें चाहिए फैट मिल्क, या फिर आप सिंपली कोई सा भी दूध यूज कर सकते हैं, 1.5 लीटर। साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बासमती राइस। अब आपने क्या करना है, 2 कप्स चावल ले लेने हैं और इनको अच्छी तरह से भिगो के, धो के, साफ करके और इन्हें बिल्कुल क्रश करके रख लेना है। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है चीनी, यानी कि शुगर, 1.5 कप, जिसे हम यूज करेंगे 1 फुल कप एंड 1.5 कप। लेकिन अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है या फिर आप मेरी तरह मीठा प्रेफर करते हैं, सो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हैं, ये टोटली अप टू यू, अप टू योर चॉइस, क्योंकि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इस तरह से कुछ लोगों को खीर बहुत ज़्यादा स्वीट अच्छी लगती है और कुछ लोग चाहते हैं कि बिल्कुल मिनिमम सा मीठा हो, यानी कि हम मीठा खा भी रहे हों लेकिन हमारी कैलोरीज बिल्कुल भी डैमेज ना हो और शुगर लेवल हाई ना हो। सो इट्स टोटली योर चॉइस, लेकिन मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 फुल कप एंड 1.5 कप शुगर। साथ ही साथ हमारी रेसिपी में शामिल होगा इलायची पाउडर 1.5 टेबलस्पून, खोया या फिर बर्फी 1 एंड 2 कप, जिसे हम किसी भी खीर के अंदर इसलिए शामिल करते हैं ताकि उसमें वही रेस्टोरेंट स्टाइल रिचनेस हो, स्वीटनेस हो और वो बहुत ज़्यादा क्रीमी बने। अच्छा, हम इसमें शामिल करेंगे केवड़ा वाटर 1 टेबलस्पून और लास्टली हमें ज़रूरत है उन इंग्रेडिएंट्स की जो कि हमारी रेसिपी को खूबसूरत दिखने के काबिल बनाए, यानी कि मैं बात कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए पिस्ता, बादाम, मेवे और साथ ही साथ कोकोनट की। सो इन सभी को हम शामिल करेंगे आखिर में ताकि हम अपनी रेसिपी को दिखने में खूबसूरत और प्रेजेंटेबल बनाएं। तो जी लिसनर्स, ये तो आप सभी ने नोट कर लिए होंगे, आइए जरा थोड़ा सा म्यूजिक मस्ती की जाने भी बढ़ते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी तो साथ ही साथ जरूरत है कम्युनिकेशन की और इंफॉर्मेशन की। सो जी लिसनर्स, अगला गाना हम शामिल करने जा रहे हैं, हमारे एक बहुत ही प्यारे लिसनर की रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये गाना उनका बहुत ज्यादा फेवरेट है और उन्हें याद दिलाता है अपने किसी प्यारे की। सो हम उनकी इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे और शामिल करेंगे ये ट्रैक। सो आइए आप और मैं मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक।
1: दुनिया के लिए जफर बस लेकिन उसको सुलझाने में मैं उलझ रही थी। वो तूफान की तरह मेरी जिंदगी में आया और मैं उम्मीद की तरह उसके साथ बह गई।
2: तुम्हें पता है लाहौर का पुराना नाम लोहावर था, यानी लोहारों का शहर। इस जगह की पहचान उसके लोहारों से है। अंग्रेज यहाँ पे मशीन लाना चाहते हैं जिससे सारे लोहार बेरोजगार हो जाए।
3: मुझे समझ नहीं आता

0: वहां से थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

तो लिसनर्स, इंग्रेडिएंट्स तो आप सभी से मैंने शेयर कर दिए थे, लेकिन अब बारी आती है हमारे प्रोसीजर की। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बड़ा सा कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई पैन ले सकते हैं, लेकिन चूंकि क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है तो कोशिश करिएगा कि कोई ऐसा बर्तन यूज़ करें जो थोड़ा साइज में बड़ा हो। अब आपने क्या करना है, इसमें अच्छी तरह से दूध को उबाल लेना है। जब आपका दूध बिल्कुल उबल जाए तो आंच हल्की कर दे, और आपने अब इसमें शामिल कर देने हैं चावल जो कि हमने क्रश करके रखे थे, ठीक है। साथ ही साथ आपने शामिल कर देना है इलायची पाउडर ताकि टेस्ट और अरोमा अच्छे से इन्हेंस हो जाए।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से जी मैं हूँ आपकी आरजे दीवान एंड ओनली आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सलू राज। खुश आमदीद करती हूँ, वेलकम करती हूँ तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुन रहे हैं सलू राज की। तो बताइएगा क्या हाल चाल है, कैसा गुजर रहा है दिन। मेरे ख्याल में काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, और इतने दिनों बाद अगर मुलाकात हो ही गई है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हाल चाल ही पूछेंगे। बताइएगा क्या हाल चाल है, कैसा गुजरा है दिन, क्या कर रही हैं घर बैठी या बताइए जो मुझे सुन रही है। सो आप मुझे बताइएगा क्या मुझे क्या करते वक्त सुन रही है, लेकिन आप बताएंगे कैसे। स्टूडियो का लाइव व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट कीजिएगा 01157100971। इस खूबसूरत नंबर को कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। इसके अलावा मुझे गूगल पर भी सुन सकते हैं, radiofaza.co.au की आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हमारा या भी किसी भी तरह की प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पर करता है, सवाल वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से रेडियो फजा 97.1 एफएम के नाम से, और बेशक ये कि इंटरनेट आपका अपना हो चाहिए, क्योंकि इंटरनेट अपना हो तभी मज़ा आता है। मतलब मांगी हुई चीज़ का मज़ा आता है, लेकिन फिर भी आजकल ये रिवाज बन गया कि जब हम किसी के घर जाते हैं, किसी की तरफ जाते हैं, तो वो सबसे पहले पानी मांगा जाता था, पानी का गिलास दे दें। लेकिन अब जो है वो 10 सेकंड के बाद बोला जाता है ज़रा वाईफाई का पासवर्ड तो लगा दीजिए। आजकल इस चीज़ का ट्रेंड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, बट प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन, मीडिया और आपकी होगी कम्युनिकेशन और होगी मिलकर इंटरटेनमेंट। और जो लोग ऑफिस की तरफ निकल आए, ये बताइएगा कि आपका दिन कैसा गुजरा है। अगर ऑफिस में पड़ जाते साथ पड़ चुकी है आपको खड़ूस बॉस की डांट, घबराने की कोई बात नहीं है। अपने ऑफिस से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें, ब्रेक लेने के बाद किसी पार्क में या फिर किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहाँ पर जाकर आप रेडियो फजा 97.1 एफएम को ट्यून कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तन्हाई का साथ ही सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 एफएम ही है, जहाँ पर हम लेकर आते हैं आपके लिए प्रोग्राम। बड़े ही मज़े की ट्रांसमिशन होती है आपके साथ, बट मेरे ख्याल में मेरा इंतज़ार आप लोग काफ़ी शिद्दत से करते हैं, क्योंकि मैं आपके 1% ट्रैक प्ले करती हूँ, आपके साथ गपशप लगाती हूँ और आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाती हूँ। लेकिन प्रोग्राम में हमेशा की तरह एक छोटा सा टॉपिक शामिल किया जाता है, उस टॉपिक के वाले डिस्कस स्टार्ट की जाती है। बट लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मैंने 5 टॉपिक बताए थे, और फिर मुझे लिसनर्स की तरफ से मैसेज आया था कि ये 2 टॉपिक्स जो है ना इनके आवाज़ से डिस्कस करें, तो मैंने उनको डिस्कस किया था। बट आज के दिन कोई नया टॉपिक रखेंगे। जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। प्रोग्राम में शामिल होकर मौजूदगी का भी एहसास दिलाइएगा। शामिल होने का तरीका आपको नोट करवा चुकी हूँ। जिन नए लोगों ने आज रबी फजा 97.1 एफएम को ट्यून किया, बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का।

सो वो बात कर रहे थे कि प्रोग्राम में हमेशा की तरह छोटा सा टॉपिक शामिल किया जाता है, उस टॉपिक के हवाल से हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोशिश ये करूँगी कि टॉपिक आप की राय से शामिल किया जाए। अगर कोई पैगाम किसी के नाम करवाना चाहे तो वो भी करवा सकते हैं, या फिर आज के दिन के हवाले से हमें कोई अच्छी बात प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहे तो वो भी करवा सकते हैं, लेकिन कोई ट्रैक किसी प्यारे को डेडिकेट करना चाहिए, उनको डेडिकेट करना चाहिए जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, सो मुझे बता दीजिएगा, मैं चुपके से उनका नाम लेकर प्रोग्राम में उस ट्रैक को शामिल कर दूँगी। अगर नाम नहीं भी लेना तो मैं वो नहीं लूँगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन उससे पहले जो है ना, प्रोग्राम का आगाज हमेशा की तरह मैं करती हूँ छोटे से खूबसूरत से ट्रैक के साथ, क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं अपने मनपसंद ट्रैक, तब तक आप सुनिएगा सलूर आज के पसंदीदा ट्रैक्स। और लेकिन अपनी फरमाइशें मुझे लाजमी बताइएगा, मैं आपकी इच्छाओं को ज़रूर पूरा करूँगी, आपको निराश नहीं करूँगी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं छोटे से खूबसूरत से ट्रैक के साथ, सो उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रैक पसंद भी आएगा, सो साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलूर राज की। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार, सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स ऑन, आवाज आप सुन रहे हैं सलूराज की। मुझे गाना सुनने के साथ साथ एक बात याद आ गई, कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं होती। क्यों ना आज इसके हवाले से जो टॉपिक स्टार्ट किया जाए, मतलब इज्जत की बात की जाए, तो कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं होती। मतलब आप जितना अच्छे से उनके साथ ट्रीट करेंगे ना, जितने अच्छे से उनके साथ रहेंगे, वो फिर भी आपको कहीं ना कहीं से गिरा ही देंगे और कहीं ना कहीं से यही फील करवा देंगे कि नहीं भाई, हमें इज्जत रास नहीं है। कोशिश करें कि अगर आपको कोई अपना 100% दे रहा है तो आप इसको फिर 100% ही दें, क्योंकि हर बात के पीछे, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है, और आप उस लॉजिक को समझने में थोड़ी देर कर देते हैं। लेकिन हम लोग जो है ना, अपना एटीट्यूड, अपनी अपनी अना को सबसे पहले रखते हैं, सो इस चीज़ को जो है ना कम कर दें। क्योंकि अगर कोई आप इंसान आपकी इज्जत करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे डरता है। डरता कोई किसी से नहीं है, सब बस एक दूसरे की इज्जत ही करते हैं। खैर, लेकिन प्रोग्राम का टॉपिक जो है वो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो शामिल किया जाए, क्योंकि मेरे दिमाग में तो खैर आइडिया नहीं आ रहा कि कौन सा टॉपिक शामिल करूँ। और मज़े की बात कि जब मैं वीकेंड पे जाती हूँ तो मैं ट्रैक वगैरह सुनती रहती हूँ, तो फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि यार चलो जिस दिन भी मैं प्रोग्राम करूँगी उस दिन ये ट्रैक भी करूँगी। लेकिन ये सीन हो जाता है कि जब मैं इधर आकर बैठती हूँ आपके साथ गपशप स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे भूल ही जाता है कि मैंने कौन से ट्रैक प्ले करने थे और कौन से नहीं करने थे। लेकिन वही बात ना कि भुलक्कड़ सी होती जा रही हूँ, पता ही नहीं चलता कि कौन सी बात कहाँ करनी थी, कौन सी बात को कहाँ याद रखना था, ये चीज़ थोड़ी भूलने लगी है मुझे। खैर, एक नया ड्रामा आया और मैंने सोचा कि क्यों ना उस ट्रैक को आपके अपने दरमियान शामिल किया जाए। मैंने इस ट्रैक को रात को सुना और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आपके अपने दरमियान शामिल करूँगी। सो आइए सुनते हैं इस ट्रैक को, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को। रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुन रहे हैं सलराज की। सवाल उसी के साथ साथ प्रोग्राम में मेरा आपका साथ आया ठीक ठीक 2 बजे तक। बोल प्रोग्राम में एक छोटी सी मशहूर ब्रेक हो चुकी, ठीक मशहूर ब्रेक के उस पार रही आपसे मुलाकात। साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा। और उसी के साथ साथ टॉपिक पर बड़े मजे का ढूंढ के लाई हूँ आप सबके लिए, दोस्ती। मैंने सोचा कि आज क्यों ना दोस्ती के ऊपर डिस्कस की जाए। अब मैंने एक मूवी में ये डायलॉग, मतलब सीन ये पढ़ा था, देखा था कि सुना था, डायलॉग था कि प्यार क्या है, प्यार दोस्ती है। मतलब अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। मेरे ख्याल में ये राहुल का ये डायलॉग था। सो सिंपल, प्यार दोस्ती है। लेकिन हम उस वाले प्यार को या दोस्ती को डिस्कस नहीं करने वाले, हम एक दोस्ती को डिस्कस करने वाले, जो सिंपली एक दोस्ती होती है ना, उसको डिस्कस करेंगे। बट प्रोग्राम में टॉपिक ये रहेगा, लेकिन उसी के साथ साथ एक छोटी सी प्रोग्राम में बात शामिल करवाई गई है कि इंसान को इंसान से दूर करने वाली चीज़ों में से पहली चीज़ जुबान है और दूसरी पैसा है। बिल्कुल ऐसी बात है, मैं हमेशा कहती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि आपका दुनिया को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने यही सोचा कि दुनिया झूठी है। मतलब एक बात पे झूठ बोलेंगे, फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे, यानी कि झूठ के अलावा दुनिया है ही नहीं, दुनिया है ही फानी है खुद जो है। बट एक बात वो आती है, लेकिन वो ये भी बात है कि अगर एक इंसान को पता हो कि आप झूठ बोल रहे हो और आपको पता है कि यार उसको पता है कि आप भी झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिर भी आप वही बात बार बार करो, तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अजीब लगती है। बट झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ बुरा सलूक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे माशरे में जो है ना, ज़्यादातर इज्जत उन लोगों की जाती है जिनके पास पैसा है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसे की इज्जत करेंगे तो, मैं तो पैसे की वजह से किसी की इज्जत करेंगे तो नहीं यार, ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए अपने आप में। हमें से बहुत से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कामयाब होने के बाद दूसरों को मतलब उस लिहाज से, उस नज़र से नहीं देखते होंगे। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर आप किसी ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पर आकर कामयाब हो गया, तो उन लोगों को जो आपसे नीचे की नीचे हैं, उन लोगों को जो है वो इज्जत दें, क्योंकि किसी टाइम पे आप भी उसी मुकाम पे थे, किसी टाइम आपने भी वही जो है वो माहौल देखा था, वही हालात देखे थे। लेकिन हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। हमारे पास पैसा आ गया तो बस हम फिर कहते हैं कि नहीं यार, हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। पैसे वाले जवाब नहीं देते, वो पैसे से काम चला लेते हैं, लेकिन गरीब इंसान जो है ना, वो ज़ुबान ही चलाता है, जाहिर सी बात है। लेकिन हमारे यहाँ ज़ुबान चलाने वाले को झूठा करार दिया जाता है कि वो झूठा इंसान है। अभी मैंने कुछ दिन पहले किसी से ये बात होनी थी कि उन्होंने बोला था कि मतलब हमारे सीईओ जो हैं, उन्होंने ये बात की थी कि मैं हर बात पे जवाब नहीं देता, किसी जगह पे जवाब भी देना पड़ता है। सो हर जगह पे जवाब देना वाकई ही ज़रूरी नहीं होता, किसी किसी जगह पे चुप करके मुस्कुरा देना भी जो है ना, अगले बंदे की बेइज्जती जो है उसको खुद ही फील हो जाती है। समझने वाले जो है वो समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते। अगर किसी के साथ कोई अनबन हो गई है तो खामोश हो जाएं, क्योंकि हर बात का पलट कर जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। शायद हो सकता है कि आपकी खामोशी उस इंसान को जो है वो इतना तंग कर दे कि वो मजबूर हो जाए आपसे माजरत करने पे। मतलब कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि यार आप मुझसे माजरत करो, लेकिन गलती का एहसास हो जाने पर माजरत जो है वो बनती है। और माजरत नहीं ना भी बने, आप ऐसी बातों में बात करके बोल दें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस इंसान को गलती का एहसास हो जाए। सो पैसे के पीछे कभी भी मत भागे, काम के पीछे भागे, पैसा आपके पीछे खुद आएगा। लेकिन खैर, गपशप आपके साथ स्टार्ट रहेगी बड़े प्रोग्राम में जो है वो, साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दीजिएगा। मूड अगर थोड़ा सा ख़राब है तो चाय मंगवा लें, क्योंकि मुझे भी जो है ना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी कुछ मंगवा ही लूँ स्टूडियो में पीने के लिए। गला मेरा थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। दरअसल मैं कल गई थी एक जगह पे, और वहाँ पर जा गई है तो उन्होंने मुझे पिला दिया जूस, और जूस भी कौन सा मुझे पिला दिया, इमली आलू बुखारे वाला। वो मैंने कभी पिया ही नहीं ज़िंदगी में, यानी कि मैंने ज़िंदगी में कभी इमली खट्टी चीज़ खाई नहीं उस तरह की। तो मैंने पी लिया, तो अभी उस टाइम्स जो है ना, गला थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर रहा है और आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज हुई है। मुझे बहुत से काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि क्या बात है कि यार तबीयत नहीं ठीक लग रही। तो मैंने कहा कि यार क्या ही बताओ, मतलब हर बात के पीछे कोई ना कोई लंबी स्टोरी छुपी होती है। खैर, गपशप आपके साथ जारी रहेगी, प्रोग्राम में साथ होने का एहसास जाएगा। प्रोग्राम में शर्मा होने का तरीका बड़ा ही प्यारा है, 01157100971 इस खूबसूरत नंबर कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन, मीडिया और आपकी होगी कम्युनिकेशन, और होगी मिलकर इंटरटेनमेंट।
लेकिन अभी तक के लिए सरताज का ट्रैक शामिल किए जाते हैं आपके अपने दरमियान, सो डोंट गो एंड मुझे सादी जी का साथ होने का एहसास दिलाइएगा। मिलते हैं इस छोटे से प्यारे से खूबसूरत से ट्रैक के उस पार, सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशा मदद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का रेडियो वजह ट्यून करने का, प्रोग्राम में शामिल होने का। एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था अपनी फरमाइश पे और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी होगा, क्योंकि मैं कहती हूँ कि भाई सबसे पहले अपने आप को अहमियत देनी चाहिए, बाद में दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरों के बारे में सोचने की भाई सबसे पहली बात तो ये आती है ना, आप हमेशा अपने बारे में ही सोचें, दूसरों के बारे में सोच के भी कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला, वही बात आ गई। खैर, दोस्ती की बात की जाए, दोस्ती का टॉपिक प्रोग्राम में शामिल करवाना था, करवाना नहीं था, किया था मैंने खुद। सो आइए, मतलब मैंने, मुझे ऐसा लगता है बहुत सस्ता सा टॉपिक शामिल कर लिया, लेकिन ये सस्ता नहीं है यार। इसकी बड़ी मतलब बड़ी इसकी वो मतलब बहुत वेट है इसका। दोस्ती जो है ना वो लफ्ज ही बहुत ज़्यादा मतलब मज़ेदार है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो मोहब्बत, एतमाद, खलूस और एहतराम पे जो है वो कायम रहता है। कोई भी रिश्ता हो, मैं कहती हूँ किसी भी तरह का रिश्ता हो, उसमें इज्जत जो है ना वो मोस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी की इज्जत करते हैं तभी वो रिश्ता कायम रहता है। प्यार वगैरह कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इज्जत होती है। अच्छा, मैं अक्सर मेरी अपने उस्ताद के साथ मतलब बहस हो जाए, सर हैं जो मेरी, अक्सर उनको उनके साथ ऐसी बात हो जाती है, वो मुझे कहते हैं तुम्हें तो मेरा जरा भी डर नहीं है, तो मैं कहती हूँ मैं आपसे डरती नहीं हूँ, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। सो इज्जत ही जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप किसी की इज्जत करते हैं इसमें बहुत बड़ी बात है। बल्कि और दोस्ती दोस्त वो शख्स होता है जो खुशी और गम दोनों में आपके साथ खड़ा हो, ना कि सिर्फ खुशी में ही आपके साथ जाता हो। और मेरे ख्याल में इस मामले में मैंने देखा है कि लड़कों की दोस्ती जो है ना वो बेस्ट होती है। मतलब आप लड़कियों को उस तरह से एक दूसरे के साथ खड़ा नहीं होते देखेंगे, लेकिन लड़के जो है ना वो हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। लड़कियाँ एक दूसरे से जेलस हो जाती हैं, सो हो जाता है अक्सर, लेकिन कोई बात नहीं, जेलस होने वाली से कोई बात नहीं है। शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी में मैं आज तक कभी किसी से जेलस नहीं हुई। भाई रब ने आपको बनाया है, अच्छा ही बनाया होगा, जेलस होने की क्या जरूरत है। फिर वही बात आ गई ना कि जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता। जब आप किसी से जलते हैं, हसद करते हैं, तो ये चीज़ जो है ना आपको ही बर्बाद करती है। वो कहते हैं जब आप किसी के लिए, किसी के हक में दुआ करते हैं तो वो सबसे पहले किसी के लिए दुआ करते हैं तो सबसे पहले आपके हक में कबूल होती है। जब आप किसी को बददुआ देते हैं तो वो आपका ही पीछा करती है। सो कोशिश यही करें कि आपकी बातों से, आपके लहजे से, आपकी हरकतों से किसी का दिल ना दुखे। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं, एक तो मैं अलग ही मेरे में कॉन्फिडेंस है एक तो, और इस चीज़ पे मैं थोड़ा घबरा भी जाती हूँ कि कहीं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले कि अगले को बुरी लग जाए, कोई ऐसा जुमला ना मेरे मुंह से निकले कि यार अगला उस बात से हर्ट हो जाए। क्योंकि जब एक दफ़ा फ्रेंकनेस हो जाए, फिर फ्रेंकनेस पे वो चीज़ निकल आती है, कोई भी अल्फाज मुँह से निकलता, लेकिन फिर भी मैं बहुत बहुत बहुत घबराती हूँ इस चीज़ को लेके। और जाहिर सी बात है घबराना भी चाहिए, इज्जत जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और जब आप चाहते हैं कि एक इंसान आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, तभी आपकी इज्जत होगी। एतमाद की बात की जाए तो सच्ची दोस्ती की बुनियाद एतमाद पर ही होती है। और खलूस की अगर बात की जाए तो अच्छा दोस्त बगैर किसी लालच के मदद करता है, बगैर किसी लालच के आपके साथ रहता है और हर मुश्किल टाइम में आपके साथ खड़ा होता है। वफ़ादारी, मुश्किल वक्त में साथ देना वफ़ादारी की निशानी होती है। और मेरे ख्याल में ऐसा तो कोई दोस्त मुझे अभी तक मिला नहीं ज़िंदगी में। तो लड़कियाँ वही बात आ गई ना, एक दूसरे से जलती हैं तो है, छोटे मोटे मसले होते रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। एहतराम की बात की जाए तो एक दूसरे के रवैये और एहसास का एहतराम करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस चीज़ का ख्याल भी रखना चाहिए कि अगर किसी को आपकी किसी भी तरह की कोई बात बुरी लग रही है तो उस चीज़ को थोड़ा कम कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने दिमाग की सुने और अपने दिल की सुने, अपनी मस्तियों में लगे रहें। भाई नहीं यार, अगले की भी तो मर्ज़ी देखनी है कि अगला क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। सो अभी जो मैं बात करने जा रही हूँ ना, ये सिर्फ दोस्ती के हवाले से नहीं है, हर रिश्ते के हवाले से, वो किसी भी तरह का हो, माँ बाप का हो, बहन भाई का हो, दोस्तों का हो, किसी भी तरह का, किसी भी तरह के रिलेशन में आप हैं, किसी भी तरह की कोई बात हो तो उसमें ये सारी बातें जो है ना वो सबसे पहले होती हैं। सच बोलना और झूठ ना बोलना, सच बोलने से एतमाद जो है वो कायम रहता है। दोस्त की बात गौर से सुनना और फिर उस पर हंसने की बजाय उसके साथ खड़े होना, उसकी बात को समझना, उसको उल्टा समझाना। ज़िंदगी में समझाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, ये बात मैंने भी काफ़ी ज़्यादा नोट की। अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आपको मिला है जो आपको बुरे वक्त में उस
उस मोमेंट में आके आपको समझाता है, जिस टाइम में आपको लगे कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। तो मेरे ख्याल में उस इंसान को आपको संभाल के रखना चाहिए। मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं भी जो है ना, मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा पर्सन हो जो मुझे ऐसी बातें समझा और मैं उसको संभाल के रखूँ, या बट अभी तक के लिए कोई ऐसा सीन नहीं है। बट मेरे ख्याल में शादी के बाद ही कोई सीन बनने वाला है मेरा। खैर आप भी सोचते होंगे कि सलूराज की अभी तक शादी नहीं हुई, हो जाएगी भाई हो जाएगी, इतनी कोई जल्दी नहीं है मुझे भी, लेकिन मेरे घर वालों को बहुत जल्दी है इस चीज़ की। ज़ाहिर सी बात है घर वालों को ही होती होगी, इसको होनी है। खैर बात लेते लेते लेके हम कहाँ कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं, एक तो समझ नहीं आती। सो बात करते हैं एक दूसरे की कामयाबी पर खुश होना भी जो है ना वो अच्छी बात होती है, एक अच्छी निशानी होती है दोस्ती की, और होना भी चाहिए। हम लड़कियों जैसे थोड़ी ना है, मतलब वहाँ बोलेंगे हम लड़कियों जैसे थोड़ी ना है कि हम छोटी बात पर जैलस होने लगते कि यार उसने इस कलर का ड्रेस पहना है, उसने ये लिए कहाँ से हो गया, यार इस कलर का ड्रेस पहने मैंने पहना था, उस लड़की ने पहन लिया। सो ये मसले मसायल जो है ना वो चलते ही रहते हैं, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई मसला नहीं आया। बनाने वाले ने आपको बहुत बहुत बहुत खूबसूरत बनाया, और आपको कदर करनी चाहिए खुद की। सो इंसान की ज़िंदगी का एक कीमती रिश्ता होता है जो उसको, जिसको वो संभाल के रखना चाहता है, वो दोस्ती हो या किसी भी तरह का। अच्छे दोस्त ना सिर्फ हमारी खुशियों में शरीक होते हैं बल्कि मुश्किलात में भी, आजमाइशों में भी हमारे साथ खड़े होते हैं, राइट? ये बात बिल्कुल ठीक है, और मैं इस चीज़ पे एग्री भी हूँ कि लड़के जो है ना, लड़कों को लेके मतलब, तो लड़कियों वाला मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट है कि यार लड़कियाँ मुश्किल वक्त में साथ खड़ी थी, ना ना ना, वो फिर आगे पीछे सारी खोल के बताते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपने, अगर आपका कोई दोस्त है, आपने उसको वो राज बता दी जो आपने किसी को भी नहीं बताया, सो हो सकता है यार उस दोस्त के भी दोस्त हों, वो आपकी बात जाके उनके साथ शेयर करता हो। सो इस चीज़ से थोड़ा ख्याल रखें। मैं इस चीज़ से बहुत बहुत बहुत जो है गुरेज करती हूँ, और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपनी बात सिर्फ अपने तक रखूँ, ना कि किसी से शेयर करूँ। सुन लेती हूँ, लेकिन मुझसे जब कोई पूछता है कि यार आपका कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है यार कोई भी इस तरह की बात, तो मैं चुप करके मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हैवलोजी के साथ अब वक्त हुआ जाता है प्रोग्राम में एक छोटे से ट्रैक का, गपशप आपके साथ जारी रहेगी, लेकिन फरमाइश हमारे पास अभी तक पहुंची नहीं है। अभी मुझे किसी ने पर्सनल नंबर पे फरमाइश की थी कि एक छोटी सी फरमाइश आप तक आपसे करेंगे और आप उसका प्रोग्राम में प्ले कर दीजिएगा, लेकिन अभी तक कोई फरमाइश नहीं। मत पता क्या यार, मैं इतना ज़्यादा बोल पड़ी और आपने अभी तक मुझे फरमाइश ही नहीं बताई, मैम दिस इज़ नॉट फेयर। खैर चलें कोई बात नहीं, आप मुझे बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में अपनी पसंद का एक ट्रैक शामिल कर लेते हैं, अभी ही कर सकते हैं। मेरे पास एक दो ट्रैक की फरमाइश मौजूद है, लेकिन उसको ढूंढने में जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और टाइम लग गया तो फिर आपने कहना है कि सलूराज अपना BGM ही हमें सुनाती रहती हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रोग्राम में जो है एक छोटा सा ट्रैक शामिल करूँगी अपनी पसंद का, बस वो मुझे मिल जाए सही। फिर वही बात आगे के सोच के आती हूँ कि वीकेंड के बाद जाऊँगी, ये ट्रैक प्ले करूँगी, वो ट्रैक प्ले करूँगी, लेकिन ना जाने एंड पे आके मुझे ट्रैक ही भूल जाते हैं कि यार मैंने कौन सा ट्रैक शामिल करना था, और ऊपर से इतने दुखी दुखी ट्रैक शामिल आ जाते हैं ना सामने आ जाते हैं। सब दुखी ट्रैक शामिल नहीं करेंगे, माहौल को सेंटिमेंट ही नहीं बनाना हम लोगों ने। प्रोग्राम में जो है शामिल होकर ऐसे ट्रैक शामिल करवाइएगा जो पहले कभी भी हमारे प्रोग्राम में प्ले ना हुए हों। मतलब यार क्या कोई ट्रैक ही नहीं मिल रहा सल्लू यार, कोई बात नहीं हम कोई और ट्रैक शामिल कर देते हैं, बट उसको भी अपनी पसंद का ही ट्रैक शामिल करेंगे। मिल गया, मिलने में थोड़ी सी देरी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, प्रोग्राम में शामिल करे जाते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक को। ट्रैक मैंने उठाया है तीफा एंड ट्रबल मूवी से उठाया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रैक पसंद भी आएगा। अली जफर और आयमा बेग की आवाज़ में आइए सुनते हैं इस ट्रैक को, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार। बोलने की हिम्मत अब जो है वो ख़त्म होती जा रही है, गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही, बट अगर आप जैसे प्यारे लोग सुनने वाले होंगे तो सलूराज कहाँ थकेंगी बोल बोल के। सो आइए सुनते हैं इस ट्रैक को, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार। सो डोंट गो एनीवे, रहिएगा मेरे साथ साथ।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स टाउन, आवाज आप सुन रहे हैं सलू राज की। सवाल उसी के साथ साथ प्रोग्राम में एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा। लेकिन उसी के साथ साथ प्रोग्राम में बाहर होने लगी एक छोटी कमर्शियल ब्रेक। सो कमर्शियल ब्रेक उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। मिलते हैं छोटी सी चुनू उन उसी कमर्शियल ब्रेक के उस पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को। रेडियो फजल 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुने लंच बॉक्स लॉन्च। आवाज़ आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह मेरी मीन क्या होता है यार असल राज की। सुबह उसी के साथ साथ प्रोग्राम एक छोटी चीज़ों बेकार हो चुकी थी, कुछ ब्रेक उस पर रही आपसे मुलाकात। सो प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरत सी बात, मतलब एक छोटा सा टॉपिक ही शामिल करवाया गया और मुझे या मेरे ख्याल में इस टॉपिक के बाद से डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि सख्त वाला जो है ना वो सख्त वाली फरमाइश आई है और फरमाइश भी किसकी आई है ये मैं बताऊंगी आपको। मेरी बड़ी खूबसूरत सी फ्रेंड है उसकी तरफ से, और उसने मुझे बोला कि आगे एक घंटे में इसी को लेकर चल, मतलब क्या यार अगला घंटा पूरे घंटे में नहीं लेके चल सकती मैं, आधे घंटे का रखेंगे, फिर उसके बाद जो अगला सेगमेंट हमारा होगा वो म्यूज़िक का होगा, म्यूज़िक में आपकी फरमाइशों को मैं पूरा करूँगी। सो बात यह है कि छोटी छोटी खुशियों की अहमियत, इसके बारे में थोड़ी डिस्कस करनी चाहिए मुझे, और पीछे से ऑर्डर आया तो करनी तो पड़ेगी। सो ज़िंदगी हमेशा बड़े कामयाब लम्हों से खूबसूरत नहीं बनती, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ भी ज़िंदगी को ख़ास बनाती हैं। एक अच्छी बात, किसी की मुस्कुराहट, अपनों का साथ, अपनी पसंद की चाय और किसी की मदद करना, या कोई छोटी सी कामयाबी, ये सब दिल को जो है खुश कर देती है, और ये दिल को तब खुश करती है जब आपने अपने आप को भी ठीक रखना हो। किसी इंसान के साथ अगर आप चल रहे हैं तो पूरे मुखलसी के साथ चलें, ना कि बीच में डंडी मारें धोखा दें। अक्सर हम जो है बड़ी चीज़ों के इंतज़ार में मौजूदा नियमतों को जो है वो भूल जाते हैं। हमारी बड़ी बुरी आदत है, मतलब हम इंसानों की तो काफ़ी बुरी आदत है, मतलब हमारी ही बुरी आदत है कि हम लोग मुश्किल टाइम में रब को इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं, लेकिन खुशी के मौके पर हम उसको याद नहीं करते, और जब हम जो चीज़ हमारे पास मौजूद है हम उसकी कदर नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ हमारे से दूर है उसी की कदर करनी है भाई, उसी के पीछे भागना है। जब आप मेरी एक बात को याद कीजिएगा, जब आप चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देते हैं ना तो सब कुछ खुद चल के आपके पास आता है, लेकिन फिर वो बात बीच में आ जाती है कि जब इंसान का दिल थक जाए, जब इंसान ज़िंदगी से हार जाए, तो फिर वो उन चीज़ों का बयान का कोई इतना खासा फ़ायदा नहीं होता। हमें सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है उसकी कदर करें, क्योंकि खुशी जो है वो सिर्फ हासिल करने में नहीं बल्कि शुक्र अदा करने और लम्हों को महसूस करने में भी होती है। छोटी खुशियों को अहमियत देने वाला इंसान जो है ज़्यादा पुरसकून और मुतमिन रहता है। ज़िंदगी के हर दिन में कोई ना कोई खूबसूरत लम्हा छुपा होता है, अब बस उसको ढूंढना जो है ना ये हमारी मेहनत होती है, उसको कैसे लेकर चलना, उसको कैसे निकालना है छुपी हुई चीज़ को, ये हमारे पे कैरी करता है। जैसे कि खूबसूरत से लंच बॉक्स ओपन करते हैं जिसमें ना सिर्फ खाना होता है बल्कि बहुत सी छुपी बातें ऐसी होती हैं, कुछ जज्बात, एहसास, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आपने मुझे बतानी होती है। खूबसूरत लम्हे हमेशा छुपे ही होते हैं, बस उन्हें देखने वाली नज़र होनी चाहिए। सो देखने वाली नज़र जो है वो कम ही लोगों के पास होती है। कभी कभी जो है हम खुशी को सिर्फ बड़ी कामयाबियों से जोड़ देते हैं, जैसा कि कोई बड़ा मकसद हासिल करना या कोई बड़ी चीज़ जो है वो मिल जाना, लेकिन असल में ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे जो है ना अक्सर बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी का खलूस जो है वो उसके साथ खिलवाड़ करना, किसी भी तरह की उसको जो है वो उसके साथ डिसरिस्पेक्ट, किसी भी तरह का उसको चीट करना, ये जो है ना इंसान की बहुत पुरानी आदत है, लेकिन इसको ख़त्म भी करना चाहिए। घर वालों के साथ वक्त गुजारना, अपनी पसंद का काम करना, ये सब जो है छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं। वो मैंने एक रील देखी थी मे बी शायद परसों, फ़ोन स्क्रॉल करते एकदम से एक रील सामने आ गई कि आज घर का वाईफाई बंद हुआ तो पता चला कि यार घर वाले भी अच्छे हैं। सो घर वालों के साथ बैठे उठे बैठे उनके साथ बातें करें। हम सिर्फ फ़ोन से अपने तक और अपने से फ़ोन तक महदूद रह चुके हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इर्द गिर्द के माहौल से भी जो है वो वाबस्ता रहना चाहिए, इधर उधर की खबरें भी रखनी चाहिए, लेकिन अच्छी खबरें हों, किसी की झुगलियाँ नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात, हमें दूसरों के से मुकाबला करने की बजाय अपनी ज़िंदगी के अच्छे लम्हों को महसूस करना चाहिए, और क्योंकि जो इंसान छोटी छोटी नेमतों की कदर करना सीख लेता है ना, वो ज़िंदगी में ज़्यादा जो है वो पुरसकून ज़िंदगी गुजारता है। और मेरे ख्याल में ऐसी ही बात है, खुशी हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं मिलती, कभी कभी एक छोटी सी मुस्कुराहट भी जो है ना पूरे दिन को खूबसूरत बना सकती है। और इस छोटी सी मुस्कुराहट को लेकर एक बात याद आ गई, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपकी मुस्कुराहट से किसी का दिन अच्छा हो रहा है, अगर किसी की मुस्कुराहट से आप अगले इंसान को खुशी मिल रही है, तो मुस्कुरा दे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मुस्कुराने में कौन सा वैसे लगते हैं। कुछ लोग बहुत मूडी होते हैं,
جو صرف اپنے تک ہی محدود رہتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ یار دوسروں کی خوشی بھی ہے. کبھی کبھار دوسروں کے ساتھ کسی ایسے انسان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اس انسان کی خوشی کے لیے، نہ کہ اپنی خوشی کے لیے. کبھی کبھار آپ دوسروں کی خوشیوں کو بھی دیکھیں، جب آپ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھتے ہیں تو اوپر والا جو ہے وہ آپ کی خوشی کو دیکھتا ہے. اسی بات سے پھر مجھے ایک بات بھی یاد آ گئی، اور وہ بات میں آپ کے اپنے درمیان ضرور شامل کروں گی، اور میری کوشش یہ رہے گی کہ آپ کو وہ پسند بھی آئے گی. سو وہ بڑی ہی پیاری بات ہے کہ ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے لیے جو میری چاہت ہے، تو وہ بھی ملے گا جو تیری چاہت ہے. اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے. اور پھر اینڈ دی اینڈ یہی ہوگا، اور پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے.

सो बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पे खत्म होगी, मुस्कुराहट का ख्याल रखा जा रहा था, बस भुलक्कड़ सी होगी, बातें बोलनी शुरू हो जाती हैं। सो बात करते हैं खुशियों की, छोटी छोटी खुशियों की। जिंदगी एक सफर की तरह है। जिंदगी एक सफर की तरह है जिसमें हर दिन एक नया मौका जो है हमें मिलता है। हम अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छा बना सकते हैं, अगर हम सिर्फ बड़ी कामयाबियों का इंतज़ार करते रहेंगे तो हम आज के खूबसूरत लम्हों को खो देंगे। जुबान लड़खड़ा रही, आई डोंट नो क्या मसला है, शायद मुझे भूख लग रही है इस वजह से। और फिर हम लोग जो है ना, आजकल की जो नौजवान नस्ल है ना, वो नाश्ता भी नहीं करती ना। नाश्ते में हम लोग बिस्किट्स खा रहे हैं, आइसक्रीम्स खा रहे हैं। यार नाश्ता भी करना चाहिए, मुझे बड़ी डांट पड़ती है इस हवाले से कि यार नाश्ता करके जाया करो। बट वही बात है कि नाश्ता करने ही नहीं होता सुबह सुबह। यार कौन नाश्ता करता है सुबह भी हो, मतलब जो भी हो, उठ के नाश्ता तो करने होता नहीं है। बस मेरा दिल होता है कि मेरे सामने एक बिरयानी की प्लेट रख दीजिए, बोतल जो है वो तो मुझे, मैंने कोल्ड ड्रिंक मैं इतनी पीती नहीं, उससे मुझे उल्टियाँ लग जाती हैं। खैर एहतियात करें, अपना ख्याल रखें।

सवाल। भूख का इंतजाम भी मैंने कर लिया, मैंने बड़ी मजेदार का स्लांटी जो है ना वो स्टूडियो में मंगवा दी, तो मैंने सोचा कि मेरा साथ साथ उसको भी इंजॉय किया जाए, साथ साथ आप तक अपनी आवाज़ भी पहुँचाई जाए। बट खाना मुझे नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि गला मेरा पहले ही जो है गड़बड़ कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। खैर प्रोग्राम में जो है वो गपशप आके स्टार्ट करेंगे, एक छोटा सा ट्रैक शामिल करेंगे आपके अपने दरमियान। फरमाइश आई थी एक छोटे से ट्रैक की, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रैक पसंद भी आएगा। बस मुझे वो मिल जाए, तो मिलती बड़ी मुश्किल से चीज़ है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मतलब ऐसा होता है कि जब आप उस चीज़ को ढूंढ नहीं रहे होते ना, तो वो आपके आमने सामने घूम रहे थे, जब जैसे ही आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो चीज़ें जो है वो नज़र से दूर दूर हो जाती हैं। सवाल आइए शामिल करते हैं, कुछ बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक, रांझा रांझा कर दी। और ये ड्रामा भी बड़े मज़े का था, मैंने इस ड्रामे को देखा भी, आई थिंक इसमें ये इमरान अब्बास आई थिंक वही है, इसमें काफ़ी मज़े की एक्टिंग उन्होंने इसमें की है। सवाल आइए सुनते हैं इस ट्रैक, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार। सो साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाएगा, मिलते हैं इस खूबसूरती छोटी सी प्यार सी आवाज़ के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के राज स्टूडियो से। सुबह उसी के साथ साथ मेरे ख्याल में एक छोटा सा एक्स्ट्रा ट्रैक सुनाने को आपको दे दिया था। वो दरअसल मैं खाने पीने में थोड़ी मसरूफ़ हो गई थी और वो थोड़ा पर्सनली इशू भी हो गया था, सो उसको सॉल्व करने निकल गई थी, बट मैं आ गई। सो मैंने सोचा कि क्यों ना बैकग्राउंड म्यूजिक को जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। और ऊपर से गला बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा, फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है और बड़ी मुश्किल से मैं बोल रही हूँ। आवाज़ जो है वो प्रॉपरली बंद होना शुरू हो गया है, बट आपके लिए हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो फिर काम जो है ना वो गड़बड़ हो ही जाएगा। सो वेल, बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं और शामिल करते हैं एक बड़े ही खूबसूरत सा ट्रैक और साथ में एक खूबसूरत सी आवाज़, यानी कि मेरी आवाज़। अच्छा, बहुत से मतलब ट्रैक, मैं अक्सर कहती हूँ कि ट्रैक जो है ना वो किसी ना किसी वजह से ही बनते हैं और उनके पीछे कोई ना कोई कहानी भी होती है। बब्बी जैसे तलहा अंजुम के ट्रैक थे, तलहा अंजुम को मैंने एक इंटरव्यू में देखा था और उन्होंने बोला था कि मुझे एक तरफा मोहब्बत होती है तो मुझे जो है ना मैं गाने लिख देता हूँ, गाने बना देता हूँ। मतलब यार वही बात आ गई कि किसी ना किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। सो इसी तरह अगर हमने ज़िंदगी में कोई ऐसा ट्रैक बहुत ज़्यादा सुना हो या ऐसे मोमेंट पे सुना हो जो मोमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा था, और एक मोमेंट ऐसा भी होता है जो बुरा भी होता है, लेकिन हम बुरे वाले को नहीं पकड़ के लेंगे, पकड़ के आपकी चीज़ यादों को ही लाएंगे। लेकिन बात ये कर रहे थे कि बहुत से ऐसे ट्रैक होते हैं जिनको हम सुनने के बाद हमें वो मोमेंट याद आ जाते हैं जिनके जिस टाइम पर हमने इस ट्रैक को ज़्यादा सुना होता था।

अच्छा अभी जो मैं ट्रैक शामिल करने वाली हूँ ना, इस ट्रैक को मैंने कभी इतना मतलब नहीं सुना, और मतलब टिकटॉक में या रील्स वगैरह में भी उस तरह से नहीं सुना, लेकिन अभी मेरे पास फरमाइश आई है तो मुझे इसको प्ले करना पड़ेगा प्रोग्राम में जो है। फरमाइश आई है, और इसी के साथ साथ फिर ये ना हो कि प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक हो जाए और फिर आप बोलेंगे कि यार हमारी फरमाइश तो पूरी ही नहीं हुई। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम आपकी फरमाइश को ज़रूर पूरा करेंगे। वो मैंने डोरेमोन कार्टून सुबह देख लिया था ना, मुझे वो ज़ुबान पे जो है ना उनकी उनका उनकी एक टोन मेरी तरफ आ गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन। आज मैं सोच रही थी कि मैं ना किड्स शो भी जो है स्टार्ट कर दूँ। खैर देखेंगे कर लेंगे, अभी के लिए स्ट्रैकोस सुनिएगा, स्ट्रैकोस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सो सॉरी, बीजीएम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही सुनाई दे दिया। उधर से मैंने अपना ना बड़े ही मज़ेदार से खाना मंगवा दिया, तो अगर आपने भी कुछ खाना ना तो आप अपने लिए भी मंगवा लें, मैं बिल्कुल भी नहीं पूछने वाली आपको। खैर, जो है प्रोग्राम में एक छोटी सी फरमाइश आई है उसको पूरा करेंगे, इसके उस बारे की आप सब लोग, क्योंकि लास्ट सेगमेंट जो हमारा होता है वो ज़्यादातर हम ट्रैक का ही रखते हैं और म्यूजिक ही होता है। सो वेल, आइए सुनते हैं ट्रैक और मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।
1: मेरे मन ये बता दे तू,
0: ट्रैक का नाम है मितवा।
1: और चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या
0: सुबह सुनिएगी इस ट्रैक को, रहेगी इसके पार आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सो वेल, मैंने सोचा कि क्यों ना बीच में आपको आके आपको तंग भी कर दिया जाए, आप तक अपनी आवाज़ भी पहुँचा दीजिए, क्योंकि स्टूडियो की डायल मशीन पे वक्त हुआ जाता है बहुत ही कम रह चुका है। तो मुझे कोशिश ये करनी पड़ेगी कि ना सिर्फ आपके साथ ट्रैक शामिल किए जाए बल्कि आपको जो है वो अपनी आवाज़ भी सुना दी जाए। लेकिन पता नहीं आपको मेरी आवाज़ पसंद भी आएगी या नहीं, आनी तो चाहिए भाई, जो भी है भाई, दो घंटा तो आपने मुझे बर्दाश्त करना ही करना है, क्योंकि ये वो गाड़ी है जो पेट्रोल से नहीं बल्कि वक्त से चलती है।

अभी मैं बीच में आकर इसलिए गुनगुना रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक छोटी सी फरमाइश है, तो मैं उस फरमाइश को पूरा करूंगी। लेकिन आप ये ना समझे कि सर्वराज पता नहीं कहाँ चलेंगे हमें छोड़ के। तो मुझे कहा गया था कि आपका नाम सर्वराज किसने रखा है, मतलब आपने ये नाम क्या सोच के रखा है। सो मेरा सिर्फ ये नाम नहीं, मेरे बहुत से नाम है, मुझे लीली भी कहा जाता है प्यार से, और मुझे ये लफ्ज़ बड़ा बुरा लगता था। बट मुझे जब इसका मतलब पता चला, मतलब मुझे इसका पता था लेकिन बोलने में ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अजीब सी लगती थी, लेकिन फूल लीली मतलब फूल, तो वो मैं ज़्यादा ये चीज़ अपनी बहन के मुँह से सुनी है। और इसके अलावा एक दो बंदे और भी हैं जो मुझे इस नाम से पुकारते हैं, लेकिन मैंने अपने लिए जो नाम चूज़ किया वो था सर्वराज प्रोग्राम के लिए।

मेरा आपके साथ प्रोग्राम आता है समरीन फातिमा के नाम से भी, लेकिन अब मेरा दिल है कि मैं लिली के नाम से प्रोग्राम शुरू कर दूँ। खैर प्रोग्राम एक छोटी फरमाइश को पूरा करेंगे। इस प्रोग्राम में इस फरमाइश को शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर मैंने ना शामिल किया तो वो कहते हैं नाराज़गियाँ हो जानी हैं। सो अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, एक बार फिर से बोलूंगी स्टे ट्यून फॉर 97.1 FM एंड डैप। मिलते हैं इस छोटे से प्यार से ट्रैक के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सो आखिरी सेगमेंट में रखा ही जो होता है ना वो ट्रैक का होता, तो अब ये मत समझिए कि ट्रैक के बाद दोबारा से ट्रैक प्ले हो जाता। सो ये फरमाइशें पूरी करने का मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, सो मुझे इसको पूरा करना पड़ता है। बट प्रोग्राम में जो इस ट्रैक को सुनिएगा, इस ट्रैक के ऊपर एक छोटा सा ट्रैक और शामिल करेंगे या कर ही जाते हैं, और फिर उसके बाद चाहेंगे आपसे मुलाकात कह रही हूँ इजाज़त। वो कहते हैं जब ध्यान दो तरफ हो ना तो कुछ ना कुछ इंसान बड़बड़ाता रहता है, बट मेरा ध्यान दूसरे मतलब बहुत से मतलब कामों की तरफ ही है। सो आइए सुनते हैं ट्रैक को, मुझे ट्रैक के उस पार रहेगी आपसे मुलाकात, मिलेंगे तो चाहेंगे आपसे इजाज़त। सो डोंट गो एनीवेयर, अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड टैप।

थोड़ा बहुत मैं भी गुनगुना रही थी, मेरी आवाज़ भी आ रही है। अभी इसी मूवी का मेरे ख्याल से ट्रैक नहीं है, दूसरी मूवी है कोई। उसका आई थिंक सो ट्रैक है मनवा लागे, ये ट्रैक है। और ये मेरे ख्याल में हैप्पी न्यू ईयर मूवी का ट्रैक है और बहुत मज़े का ट्रैक है। मैंने इस ट्रैक को काफ़ी टाइम से नहीं सुना, सुनेंगे भी नहीं। फिर भी हमें जो है वो अब वक्त हुआ जाता है आपसे इजाज़त लेने का। सो कल तक के लिए अपना, अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: लासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा।
6: इट्स कमर्शियल टाइम।
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
7: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त,

0: एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
4: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing. Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
10: You are listening 97.1 FM.

आपके मूड को फ्रेश करने के लिए हम सॉन्ग प्ले करने लगे हैं, लिस्ट की तरफ जाते हैं। सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM, क्योंकि रेडियो फजा आपका अपना रेडियो है।

सामिने रेडियो फ़ज़ा हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि रेडियो फ़ज़ा आपका अपना रेडियो है और प्रोग्राम अभी बाकी है। सुनते रहिए रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM।

0: फिर भी तुमको चाहूंगा। मोहब्बत का मतलब पाना नहीं होता, कभी कभी किसी को टूटकर चाहना भी इश्क होता है। जिस शख्स ने दिल तोड़ दिया हो उसकी खुशी की दुआ करना ही सच्चा प्यार होता है।
1: हम थोड़ा सा मूड को फ्रेश करने के लिए फर्स्ट ट्रैक प्ले करते हैं, सुनते रहिए। अगर आप अपनी राय, अपने साथ, अपने जिस बात का इजहार करना चाहते हैं तो हमें मैसेज कीजिए 0115710971 पे, क्योंकि रेडियो फजाब का अपना रेडियो है और हम आपकी राय, आपके साथ, आपके जज्बात दुनिया तक पहुँचाएंगे। सुनते रहिए रेडियो फजाब।

रेडियो फजा के प्यारे सामेईन, अभी प्रोग्राम बाकी है, कहीं मत जाइएगा, हम आपके लिए यहाँ मौजूद हैं और रेडियो फजा आपका अपना रेडियो है। आप अपने एहसास, अपने जज्बात हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ 0115 7100971 पे।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप फिल्मी गाने,

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: You are saying, we are playing.
1: Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy. Your

0: risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
1: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
2: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
1: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
2: मुगल बिल्डर्स?
1: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
2: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
4: हिट म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, पोएट्री, न्यूज एंड हेल्थ, ऑल अंडर वन रूफ। आवर रेडियो स्टेशन सरपासिंग ऑल बाउंड्रीज एंड कीपिंग यू कनेक्टेड। इट्स रेडियो फजान 97.1।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रابطہ करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।
0: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
9: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: Hey.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: लासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays.
10: Foot tapping music.
11: Huzzah 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
13: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at

0: 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
1: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
2: You are listening 97.1 FM.
3: You are staying. We are playing. Fazan 97.1 FM.
4: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
5: 97.1 FM.
6: This is a public service announcement.
2: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो।

0: न्यूज स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
1: You are listening 97.1 FM.

0: Hit music.
1: Back to back.
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
4: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
5: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
4: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
5: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
4: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
5: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
4: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
4: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
7: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
10: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
9: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
8: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
9: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
8: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
9: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
8: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
9: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
8: टेस्ट भी वाइब भी।
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैप।
6: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: Get ready to move.
8: It's all about the beats. Wow,
9: FM. Only tune Super Hit Channel.
10: Fizz on 97.1 FM.

0: ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: You are saying, we are playing
11: Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
14: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ?
15: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore only in Dedication Hour.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तू मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।
3: You are listening to Radio Fazaar 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour. Kumar Sanu.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजार

0: investment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
1: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
2: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
1: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
2: मुगल बिल्डर्स?
1: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
2: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
4: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

चाहे कोई मुझे जंग भी कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: मौजूद हैं और हाँ ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ, ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
9: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
8: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
9: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
8: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
9: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
8: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
9: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
8: टेस्ट भी वाइब भी।
10: You are listening 97.1 FM.